हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो ले।

0: हर पहर जिंदगी की लहर जी
1: अपना शहर अपना घर और मटिया
0: जी एफएम 91.6
2: इट्स 9 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: जो चवण आए थे ईरान ते टी रात में हमलन की शुरुआत करे छी है

खे क्रॉस बीम मिसाइलन सां निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त कुवैत में अमेरिकी फौजी हंधनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो। आबनाह हरमुज़ में भंजकड़ी करण ते केतरनि ई जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो। गडि॒यल अरब इमारात जी दिफ़ाई वज़ारत जो चवण आहे त ॿियनि ऑयल टैंकर्स ते ॿिनि क्रूज मिज़ाइलनि सां हमिलो कयो वियो आहे। हमले में टैंकर्स हमले जो हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो, 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। वाकियो उमानी इलाइक़े पाणी में पेश आयो आहे। ॿिन्ही टैंकर्स खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो आंदो वियो आहे। जवाबी कार्रवाई जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था। अमेरिकी सदर ट्रंप जो ईरान ते अॼु वधीक हमलनि जो ऐलान। संदसि चवण आहे त मुफ़ाहिमती यादाश्त नामो आज़माइश हुई, ईरान पासदारी न कई। सेंट्रल ईरान जे कोहो कोलांग गाज़ाला खे निशानो बणाइण वञी रहिया आहियूं। ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। ईरान ते बमबारीअ खां वधीक नाकाबंदी फ़ाइदेमंद आहे। जल्द आबनाह हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो आबनाह हरमुज़ जे ॿीहर नाकाबंदी ऐं आबनाह हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो बि ऐलान। ट्रंप चयो आहे त नाकाबंदी रुगो ईरान ऐं संदसि ग्राहकनि लाइ हूंदी, ॿियनि मुल्कनि खे आबनाह हरमुज़ इस्तेमाल करण जी आज़ादी हूंदी। आबनाह हरमुज़ जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभालींदो। आबनाह हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। अमेरिकी सेनेट काम जो चवण आहे त 15 जुलाई खां आबनाह हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। ईरान आबनाह हरमुज़ जो मुहाफ़िज़ आहे ऐं हमेशह रहंदो। ट्रंप दुरुस्त थो चवे त आबनाह हरमुज़ खां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे तहफ़ुज़ ऐं सहूलियत फराहम कंदड़ खे मुआवज़ो मिलणु घुर्जे, पर जेको कमर्शियल जहाज़नि खे पुरअमन सहूलियत फराहम करे थो मुआवज़ो हुन खे मिलणु घुर्जे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची जो सोशल मीडिया ते पैगाम। संदसि चवण आहे त फीस 20% घणी आहे, असां शफ़ाफ़ रवैयो इख़्तियार कंदासीं। ईरानी ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर्स तर्जुमान जो चवण आहे त ईरानी फ़ौज खां राब्तो करण बिना आबनाह हरमुज़ में अमेरिकी सरगर्मियुनि जी मज़ाहमत कंदासीं। برطانیہ جو ایران جے پاسدارن انقلاب تے پابندی لگان جو فیصلو۔ برطانیہ جے گھرو وزارت پاراں تصدیق۔ اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اے روس جے جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڑیل تنظیمن جی فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیمنٹ ڈاں موکلو ویو۔

0: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी, वधीक 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन शहबान में जहनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजमी अंग 79 थी वयो। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान ऐं पुलिस जो गडि॒यल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवायुनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग 117 थी वियो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आदर भाव कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फील्ड मार्शल तुर्किया अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते ॻाल्हि ॿोल बि कंदो। कराची जे पोश इलाइक़े क्लिफ्टन में रोड़ी वासी डॉक्टर आकाश कतल। वारसन जो केतिरा ई कलाक 3 तलवार ते लाश रखी धरणो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब धरणे वारे हंधि पहुतो। अॼु शाम ताईं कातिल गिरफ़्तार करण जी ख़ातिरी मक़तूल डॉक्टर जे वारसन धरणो ख़तम करे छडि॒यो। ज़ुल्फ़कार जूनियर बि यकदेज जी तौर धरणे में पहुतो। संदसि चवण हो त हिते को बि महफ़ूज़ नाहे। ॾींहुं ॾिठे जो डॉक्टर जो कतल बदतरीन बदमनीअ जो सबूत आहे। डॉक्टर प्रकाश जे वारसन जो चवण हो त प्रकाश खे ॾींहुं ॾिठे बैंक साम्हूं सरेआम कतल कयो वियो। सिंधियुनि खे टारगेट करे कतल कयो पियो वञे। पुलिस तमाशो ॾिसी रही आहे। अॼु शाम ताईं कातिल गिरफ़्तार न थिया त ॿीहर धरणो हणंदासीं। वफ़ाक़ी आइनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुवाल रेस्टोरेंट किराइण वारे फ़ैसिले खे कालादम करारोपोलिटन सूं बि मन्नत जे ट्रायल सुप्रीम जे जज़्बाती
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिह।

0: पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी ये

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: करेल अरब इमारात की दिफाई वजारत जो चवण है बिन ऑयल टैंकर्स से बिन क्रूज मिजाइल से हमलो किया है। हमले में टैंकर्स हमले जो एक भारतीय शहरी मार अठ जणा जख्मी थे वाकियो उमानी इलाके पानी में पेश आयो है। बिन्ही टैंकर्स के लगल बाह से जब्त आंदो वो है। जवाबी कार्रवाई जो हक महफूज रखू था। अमेरिकी सदर है अज हमलन जो ऐलान संदस चवण है मुफाहमती यादाश्त नामो आजमाइश हुई। ईरान पासदारी न कई। सेंट्रल ईरान जे को लांग काजाला के निशानो बणाय वही रहा हूं। ईरान से मुहिदो मुमकिन है। ईरान ते बमबारी का वधीक नाकाबंदी फायदेमंद है। जल्द आपना हरमुज की नाकी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो आपना हरमुज के बीहर नाम वीह सैकड़ो है नाकाबंदी रुगो ईरान ऐसन लाय हूंदी। बेहन मुल्क के आपना हरमुज इस्तेमाल करण की आजादी हूंदी। आपना हरमुज जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभाली। हरमुज में गुजरंदड़ जहाजन के वीह सैणी अमेरिकी सेनेट का अपना हरमुज की नाकी। ईरान अपना हरमुज जो मुहाफिज है। हमेशा ट्रंप दुरुस्त तो चले तो अपने हरमुज का गुजर जहाजन के तहफुज है। पर जो कमर्शियल जहाजन के पुरमन सहूलत फराहम करे तो मुआवजो उनके मिलन घुर्जे। पर डे वजीर अब्बाम संदस चवण है फीस वीह सैकड़ो घनी है। असा शफाफ रवैयो तैयार कंदी। ईरानी खातमुल नबिया हेडक्वार्टर्स तर्जमान जो चवण है ईरानी फौज का राबतो करण बिना अपने हरमुज में अमेरिकी सरगर्मियों की मजामत कंदी। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में रोड़ी वासी डॉक्टर आकाश कतल वारसन जो केतरा ही कलाक तीन तलवार ते लाश रखी धरणो। मेयर कराची मुर्तजा वाब धरणे वाले हंध पहुतो। अज शाम ताई कातिल गिरफ्तार करण की खातिरी मकतूल डॉक्टर

0: जे वारसन धरणो खत्म करे छॾियो। ज़ुल्फ़िकार जूनियर बि यकजहती तौर धरणे में पहुतो। संदसि चवण हो त हिते को बि महफ़ूज़ नाहे। ॾींहं ॾिठे जो डॉक्टर जो क़तल बदतरीन बदअमनीअ जो सबूत आहे। डॉक्टर प्रकाश जे वारसन जो काश खे ॾींहं ॾिठे बैंक साम्हूं सरेआम क़तल कयो वियो। सिंधियुनि खे टारगेट करे क़तल कयो पियो वञे। पुलिस तमाशो ॾिसी रही आहे। अॼु शाम ताईं क़ातिल गिरफ़्तार न थिया त ॿीहर धरणो हणंदासीं। कंदकोट में लोलाइन धुरिन में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल ऐं मारिजी वियो। झंगेण थाणे जी हद में ज़मीन जे मामले तां झेड़े में फायरिंग जे नतीजे में मुरीद लोलाई मारिजी वियो। कंदकोट पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। ऐं कश्मोर वेझो RD-140 वटि BS फीडर खे लॻल घारो टे ॾींहं गुज़रण बावजूद बि बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ ॿुॾी विया। पाणी घरनि में दाख़िल, ज़िंदगी मफ़लूज। फसल पाणी हेठि अची इंतिज़ामिया गुम। चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जो चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। अणॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराए छॾी आहे। गफ़लत जे इल्ज़ाम हेठि सब इंजीनियर ऐं SDO समेत टिन अमलदारनि खे मुअतल करे मथनि कार्रवाई सेक्रेटरी आपाशी खे सिफ़ारिश करे छॾी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: जी एफएम 91.6।

0: ट्रीटमेंट स्किन जैसी।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द सोजिश
1: देता है।
2: अब जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोट,
1: पुराने जख्म, दिन में 2 से 3
2: डेक्स ऑइंटमेंट।
3: जो असल राज ब्यूट में विटामिन ई जदीद फार्मूलो अवाज आए निकतम आई डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अब बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास. हर रोज कुदरती निखार.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
6: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान.
5: GAFM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लगी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया
1: मैं ग्रीन हूँ।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 11 AM. This time check is brought to you by
5: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
6: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
7: Lajwari Amerikee fauji lagatar 5 kalak kiranje maklab sharan te bombari. Send ka maujib Bashar Jafar, Jasak Knark, Abu Musa and Bandar Abbas te hamla kiya gaya. हमलन दौरान ईरान जी दिफाई निज़ाम ड्रोन ए मिज़ाइल थाकन ए बहरीन सरायतन के निशानों बनाया वो ईरानी फौज अब अमरीकी अड्डन ते जवाबी हमला जिम बहरीन जेल जफीर हवाई अड्डे के निशानों बनाया वो उर्दन में निशानों बनाया भारत ने ईरानी हमले अठ
8: पारां सऊदी अमले जी मज़म्मत गडियल कौमन जे इजलास के खिताब कंदे पाकिस्तान जे नुमाइंदी उस्मान जदून चयो त पाकिस्तान यमन जी खुदमुख्तियारी इतिहाद ए सलामती जी हिमायत करे तो खिते में वधंदड़ छिकताण जे खात्मे जो वाहिद हल

0: भारतकारी आहे.
1: कनकोट में लोलाई बिरादरी के बिंदुन में झेड़ो एक जड़ो मारजी वो जगण थाने जहर में जमीन के मामले तेड़े में फायरिंग सबब मुरीद लोलाई मारजी वो है. कनकोट पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाज जरूरी कार्रवाई का अस्पताल मुंतकिल किया.
0: कश्मोर वेझो आरडी 140 वट बीएस फीडर के लगल घारो टे डी गुजरण बावजूद बंद थो. केतरा ही गोठ बुडी वया. पानी घर में दाखिल. फसल पानी हेठ आपाशी इंतजामिया गुम. केटीएन न्यूज से गालाईंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बेराज चवण है त घारो हथ से हयो वो है. एफआईआर दाखिल कराए छी है.
2: एफएम नेटवर्क केटीएन न्यूज.
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो जीए एफएम 91.6.
4: आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव जान है.
5: फकीरी एनर्जेटिक क्रीम
4: कुड़ी तैयार
5: मौसरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: है.
5: रोज मर गर्दन और कंधों
4: की अकड़न के लिए बेहाव
5: में तीन से चार
4: वाले हजरात फकीरी
5: एनर्जेटिक क्रीम खत्म. आज ही करीबी लेकर

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज
2: लोगों के दिलों को अस्सलाम वालेकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू जीए रेडियो एफएम 88.6 प्यारे से चेहरा मीठी सी आवाज मासूम से दिल सूची हसी परफेक्ट पर्सनैलिटी खुश मिजाज अंदाज मुझे कहते हैं आयशी रुखसार सिंध की आवाज जैसे आप आई होप से जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल कूल एक साथ एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद हो बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है पूरे 1 बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है क्योंकि आप सुन रहे हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा जारी सारी रहेगा पूरी 1 बजे तक। प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त की बात करेंगे 11:18 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है तमाम तो लोग की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे आप बस में हैं ट्रक में हैं रिक्शा में हैं कार में हैं बाइक पे हैं जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी बट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस इसलिए खुदा खैरियत मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत मतलब

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम साथ दे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिससे मिनरल्स स्किन में सारी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छा तुम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: के लिए
4: 2200440
3: GA सखर FM 88
4: सखर की आवाज।

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. जब लगाओ गाना सुनाओ सेगमेंट. फर्स्ट कॉलर ऑफ द सेगमेंट, हेलो.
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम नहीं पहचाना.
0: सागर भाई. सागर भाई कैसे?
1: खैरियत खैरियत, ठीक ठाक ठीक ठाक. आज नहीं पहचाना आवाज से?
0: आज देखिए मैंने पहचान लिया ना, एकदम से नहीं पहचाना था. कभी कभार आपकी आवाज ना मुख्तलिफ लगती है, फिर जब नहीं लगती तो मैं पहचान लेती हूँ.
1: हाँ ये बात है,
0: यही बात है. अच्छा गाना है कोई अच्छा सा?
1: गाना मैम आज आपको सफर लिखा सुनाऊंगा हिंदी में.
0: ओके सुनाए.
1: आज जो रोने वाला नहीं सुनाऊंगा, मेरे मेरी वजह से अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए.
0: ओके.
1: अले मुझा मारुआ, अले मुझा मारुआ, मुझा चामिया, मुझा चोटिया, मरुरा मिथुरा मुझा, मरुरा जमीन मुझा, अले अले अले अले अले मुझा मारुआ, जोगी आया घूमतुआता, सामी आया घूमतुआता, जोगी आया घूमतुआता, सामी आया घूमतुआता, घायल के गाएगा, अले अले मुझा मारुआ, आ आ.
0: ओके वेरी नाइस. और ये किसका बताया आपने?
1: जफर अली का है.
0: अली जफर का. अच्छा ऐसे बोले ना,
1: अली जफर, अली जफर, अली जफर.
0: ओके जबरदस्त जी. और प्ले कर रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी मैम सब कुछ करना है. दोस्त खड़ा है मेरे साथ मोहम्मद हमजा अंसारी और शौकत मीरानी और मैं खुद ही हूँ प्रेमी सागर.
0: ओके जी थैंक यू. और ये रहा आपका गाना जो कि हम कर रहे हैं प्ले. सो इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: भी ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था
2: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: आप फिर से आगे सुनें और मुझे ये बताइएगा कि गाना सुनाएंगे।
1: जी जी सुनाऊंगा गाना चला गुल का।
0: ओके सुना।
1: विछड़ी वियो विछड़ियो नाही कोई दमो के मोह जखाई

0: ठीक है, और किसी को डेडिकेट करना है?
1: मेरे ढेलू हाथ लख मेरा मन ढेलो मामा तार लंड जवर बचल संभाली जॉब सर है मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आए मोरो पर प्रोग्राम कंटिन्यू आना ही है आपका।
0: मोरो पे कनेक्ट नहीं है?
1: नहीं नहीं अभी कनेक्ट नहीं, जल्दी कर कनेक्ट करो।
0: ओके जी, हम देखते हैं क्यों कनेक्ट नहीं है। थैंक यू।

अच्छा, आज का जो टंग ट्विस्टर है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग कहेंगे किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। जल्दी जल्दी बोलेंगे इसको, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। ठीक है, इस तरीके से गाना गाने के साथ।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: इस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: ओके जी, कॉल्स लेते हैं जी. और कॉल्स से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जिसको हम इंक्लूड करते जाते हैं, तो हमें मैसेज किया है जी हैप्पी गर्ल ने. हैप्पी गर्ल लिखते हैं, शो सुपर डुपर है. अस्सलाम वालेकुम स्वीट आरजी, मैंने आपका शो कल से सुना है. आपका शो सुपर डुपर है और आप उससे भी ऊपर. ओके, आप कहती हैं तो मान लेते हैं. हैप्पी गर्ल और मेरी बुआ सीमा आपका शो रोजाना सुनती है, वो आपकी फैन है. अरे वाह, क्या बात है. जो मेरे फैंस हैं मैं उनकी फैंस हूँ, ठीक है. और बस उन्हीं की, उसके अलावा और किसी की फैन नहीं हूँ मैं. ठीक है, जो मेरे फैंस हैं मैं सिर्फ उन्हीं की फैंस हूँ. अच्छा, आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएं, कह के दिखाएंगे. किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. सो देखते हैं आज का टंग ट्विस्टर कौन कह पाता है. सो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो,
1: सलाम वालेकुम.
0: अरे सरदर्द, क्या खा के कॉल की है? चाय पी थी. चाय का कमाल है, देख लें, चाय ऐसे काम करवा देती है कि कॉल लगवा देती है ना. चलें इसी बात पे फिर टंग ट्विस्टर कह के दिखा दें.
1: आप एक बार रिपीट करें.
0: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई.
1: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई.
0: चलो खैर, कोई बात नहीं. बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी. और कुछ कहेंगी सरदर्द?
1: अच्छा, कल बहुत कोशिश की थी आपको कॉल करने की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी.
0: कॉल लग नहीं रही थी, अब लग गई.
1: जी अब लग गई.
0: कौन सी आवाज में गाने?
1: इस माँ
0: किशोर भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं नाराज हैं, क्या बात है, क्यों है, कैसे है, बट यही है. लेकिन आ जाएंगे मेरे ख्याल से, सुन तो रहे होंगे.
1: पता नहीं.
0: हाँ सुन रहे होंगे. अच्छा चले ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सरदर्द. अल्लाह हाफिज़.

0: boy, I can see your body moving.
1: Okay, जी एक और कॉलर लेते हैं और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: मैं किरण बात कर रही हूँ.
1: किरण बात कर रही हैं
2: जी.
1: कहाँ से?
2: मोरो सिटी से बात कर रहे हैं.
1: ओहो मोरो सिटी से बात कर रही हैं. प्रोग्राम सुनती हैं किरण
2: जी? सुन रहे हैं.
1: ओके जबरदस्त. मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है? कितने टाइम से मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं?
2: रोजाना सुनते हैं.
1: पहली दफा कॉल लगी है या की ही आज है?
2: नहीं आज पहली दफा कॉल की है.
1: ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेंगी
2: जी?
1: तो बोले
2: दोबारा से बताओ.
1: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. ओके वेरी नाइस किरण. कुछ और कहना है किरण
2: जी? मेरी बोले
1: किसका सॉन्ग? तेरी खैर मंगदी. चले जरूर प्ले करेंगे जी. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना.
2: थैंक यू.
1: ओके जी अल्लाह हाफिज़.

साथ साथ हम उसे सुनेंगे. लेकिन मेरे सामने एक अदद बहुत खूबसूरत पोइट्री जो कि मुझे नजर आई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सुनाई जाए, तो सुना दूं क्या.

अब ऐसा है कि मैं उनको सताता हूँ, जलाता हूँ, रुलाता हूँ, बहुत दिल को दुखाता हूँ, छुड़ाता हूँ, महीनों सिफते शम्मा गुलाता हूँ, जफाओं को बढ़ाता हूँ, मोहब्बत को घटाता हूँ, सितम उन पे ये ढाता हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ, फकत दूर से बातें ही बनाता हूँ, कभी मुंह को छुपाता हूँ, कभी आंख चुराता हूँ, नया रोज में तूफान उठाता हूँ, मैं उस दिल पे बहुत रोब बिठाता हूँ, जो वो हाल दिखाते हैं तो लाखों ही सुनाता हूँ, वफाओं पे नजर है ना मोहब्बत की खबर है, जो इधर हाल था पहले वही अब हाल उधर है, जो ये बदला हुआ आलम है तो इसका ये असर है, वही अब सीनाए सुपर है, जो बना फिरता था कातिल, जो जफाओं में था कामिल, जो किया करता था गमजे, ये अजब रंगी मोहब्बत है कि जो रंज से रोता था वो हंसता है, जो हंसता था वो रोया है। और इसी के साथ Here comes a song by Ali Zafar.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hamid Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hamid Diamond Glow Bleach Cream।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
5: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 6। सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
8: यार ताहिर खैर ताहे यार तुझे वार बिखरियल हाल उजड़ियल
9: यार इश्क मुझे खंथा ही खनी छे
8: यार असांगे तो इश्क टेकाए छे
9: बस भाव अख्तियार मुझे इश्क पाण क्यों।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर, पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। अरे इस दिल में और कौन है, मेहमा तुम्ही तो हो, अपने अल्ता बलो जाग जानी का सलाम है मोहब्बत कबूल हो।
2: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्ता बलो जान।
1: ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया, ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया, ये धड़कनों में आपका कयाम कैसे हो गया। किताब इश्क जिसमें उम्र भर कभी पढ़ी न थी, नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया।
2: वाह वाह वाह,
1: ये चश्म मोतबर थी, ये चश्म मोतबर की जेर आप कैसे आ गई, खाली सी दिल में आप ही का नाम कैसे हो गया। खुदा तो खुद हसी है, खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को, तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। अरे तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें, भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें, फिर आज शाम में गम का एहतमाम कैसे हो गया। अल्ताफ बलोच जाग जानी जाते जाते कह रहा है कि उड़ा ले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, और पंतल पाक से जो मांगो मेरी बेटी रुखसार वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आपका स्टार भी वीरगो है और मेरा स्टार भी वीरगो है, और वीर से शुरू होता है विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री।
2: Okay, very nice, no doubt. V for Virgo and V for Victory.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

कीजिए very nice song. और इसी के साथ हम song चेंज करेंगे और प्ले करेंगे जी दो नंबर. So here comes दो नंबर song. और ये हम सुनेंगे, enjoy करेंगे साथ साथ आज के last and lucky callers.

0: आगे लास्ट में लकी कॉलर चला है वो। वालेकुम अस्सलाम, इतना स्लो क्यों बात कर रहे हैं?
1: फहद बात कर रहा हूँ।
0: फहद?
1: फारूक।
0: फारूक, फारूक कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। आप कॉल ही नहीं लगती, आपके याद कॉल लगती है?
0: कॉल नहीं लगती, बस क्या करें, बिजी होता है ना नंबर, बिजी शो है, मतलब शो इतना अच्छा होता है कि लाइन बिजी होती है, तो आप दोबारा दोबारा ट्राई किया करें, जल्दी जल्दी में लाया करें ताकि आपकी कॉल लग जाया करे।
1: तकरीबन 100 दफा कॉल लग गई है।
0: 100 दफा कॉल लग गई है?
1: नहीं लगा ही है तो नहीं लगा नंबर, अभी लास्ट का दफा मैंने करते लगा।
0: चले, लास्ट लकी कॉलर है आज के फारूक, आप हमें ये बताइए आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात कौन सी कोई आप बताए?
0: मैं तो बताती ही हूँ, लेकिन आपसे पूछनी है ना, जो लिसनर्स आएंगे लास्ट में उनसे पूछनी है, ये शो का रूल है।
1: अच्छा अच्छा,
0: यस। कोई भी अच्छी बात जो जहन में रैंडम अचानक से आ रही हो, इस वक्त मौजूद हो?
1: नहीं अभी तो नहीं, कोई
0: नहीं आ रही। अच्छा, कोई बुरी बात आ रही है जहन में?
1: नहीं नहीं, अभी ड्यूटी में बैठा हूँ, रेगुलर शो
0: सुनते हैं। चले, इसी तरह सुनते रहे, इंजॉय करते रहे, इंशाल्लाह आपके जहन में फिर अच्छी बातें जरूर आया करेंगी।
1: पाकिस्तान आर्मी के नाम कोई नगमा चला?
0: ओके, पाकिस्तान आर्मी के लिए सॉन्ग चलाते हैं। ओके,
1: आपका आपका शो तकरीबन फौजी सुनते हैं और मैं भी अभी आपका शो सुन रहा हूँ।
0: चले, इसी बात पे हमारे फौजी भाइयों के लिए हम एक गाना प्ले करते हैं लास्ट में, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

0: जेकम बाद पुलिस सां गिरफ्तार थियल मेने एजाज जखरानी जो नंढो भाउ आज़ाद जखरानी कराची मुंतकिल लॻुणे मेने महरूम बाबल खान जखरानी जे नंढे पुट मीर आज़ाद खान जखरानी खे जेकम बाद पुलिस सख़्त सिक्योरिटीअ में कराची दरक्षा थाणे ते मुंतकिल कयो। एमएनए मीर एजाज़ हुसैन जखरानी ज़ेर खान जखरानी जी वफ़ात बाद हुसैन जखरानी सां नंढे भाउ मीर आज़ाद खान जखरानी में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ।
1: हिकु ॼणो क़तल ॻोठ में सगावती धुरिन में जहिड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे लोलाई मारिजी वियो। राधण भरिसां प्लाट जे तकरार तां घर ॿाहिरां सुतल ॻोठाणो क़तल तालिब कलोड़ो खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो वियो। खैरपुर नाथन शाह जे ॻोठ आढो खान गाॾाई में हथियार बंदनि हथां नौजवान मोहम्मद बलोच क़तल कारण मालूम न थियो। शक जी बुनियाद ते हिकु ॼणो गिरफ़्तार।
0: सिंध में ज़री पाणीअ जी खोट बरक़रार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहरा ऐं धरणा। कनकोट में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुराद वाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ डीसी आफ़ीसर जो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली भरिसां बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार जो धरणो। मुराद वाह जे पुछड़ ताईं पाणी न पहुचण जो मुतालबो कयो। ख़बर में पई इमाम वाह जा जागीर वाह में पाणी शदीद खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि कराची बदीन रोड ते धरणो हयो। खैबर वेझो ॻोठ पुनू हिंगोरो जे रवासनि सुई कुंदर शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
1: कश्मोर वेझो आरडी 140 वटि बीएस फीडर खे लॻल घारो टे ॾींहं गुज़रण बावजूद बंदि न थियो। केतिरा पाणी घरनि में दाख़िल। फसल पाणी हेठि आपाशी इंतिज़ामिया गुम। केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज जो चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। एफआईआर दाख़िल

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी
1: और मठियारी की आवाज दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरंग बहरापुर माजली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से। तो आप तमाम जो सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम अगर आप हमारा सुन रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो तरीकेकार क्या होने वाले हैं सब कुछ बताएंगे, लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स को रीसेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जी एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और जी यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े मासूम होते हैं, जिनको नहीं होता पता कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसका जो इंतखाब होगा हमारी जिंदगी में किस तरह साबित होने वाला है। तो बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा वाली बातें ऐसी हैं जो कि आप लोग जाने तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और जनाब फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो बिल्कुल जी, आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहने वाले। तो चलिए जी, ये 2 घंटे हम जरा लॉक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का हमारा साथ होता है 2 घंटों में। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बॉस, आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी नात जो हमारी लिस्ट में मौजूद है वो सुनाते हैं जी आप लोगों को, उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करते रहिए ताकि खूबसूरती आपको मिले ऐसी वाली जो आप चाहते हैं।

0: जी आप सुन रहे हैं वाई टी शन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है वाई टी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और जनाब अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम होकर आप हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाएंगे ना। इसी के साथ साथ बताएंगे जी क्या तरीकेकार है हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनने में। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप लोगों से आज के प्रोग्राम का जो सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या होने वाला है वो जरा जान लेते हैं। ओके जी, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल जो होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा कह लेते हैं कि नॉर्मल सा हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें हमें जिंदगी में जाननी चाहिए और कुछ बातें अगर हम जानना चाहते हैं और उन्हें जान नहीं पाते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आज आप जो हैं, मैं आप लोगों से जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब मुझे बताएंगे। तो सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अक्सर इस बात के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी बात जो है वो बढ़ सकती है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हाँ मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, हमने ज्यादातर लोगों ने ये भी देखा होगा अपनी जिंदगी में कि अगर आप किसी को एक और मौका देते हैं अपनी जिंदगी में तो वो उससे भी बहुत बड़ा कांड आपकी जिंदगी में कर जाता है जितना उसने पहले किया हुआ था। समझ रहे हैं? तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या हर इंसान को एक और दूसरा मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ी बड़ी टॉर्चों के साथ जरा रोशनी डालिए इस टॉपिक के ऊपर और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और शामिली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड ई स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिलती है जिससे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें। अच्छा हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट को लाइक भी नहीं करते, तो लाइक कर दिया करें भाई, कंजूसी यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, वैसे भी मुफ्त में हो जाता है। तो पोस्ट को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ओके जी, इसी के साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी खूबसूरती के लिए हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए जी, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी फार्मूला मिल रहा है, सोप मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, उसके अलावा लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल लोशंस मिल रहे हैं और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। इतने सारे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो जानेंगे कि आए हाय क्या बात है, मजे के प्रोडक्ट्स हैं। तो लगाइए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाते जाइए और ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होने चाहिए। तो आपने डायल करना है 03-15-795-9595। ओके, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ आदिल मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, तेरी कुर्बत भी नहीं हुई मयसर और दिन भी बारिशों के आ गए हैं। ओके, आमिर अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके जी, खुशामदी। चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बेटा आप कैसी हैं, हो फाइन, यस। यदि आज टॉपिक क्या सोच कर आई हैं आप, मैंने बता दिया, बताएं जरा आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगे। वासु भाई मौजूद हैं, हेलो वासु भाई, कैसे हैं। अली अकबर ब्रोही हमारे साथ ही सकरण से हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ साथ प्रोग्राम गुड है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है फोजिया सोमरो सुनाइएगा। ओके, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। अवेश सभा सोलंकी हमारे साथ ही, सरफराज अली भी हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच, वालेकुम अस्सलाम, गुलाम फरीद जागीरानी संघी से, क्या हाल है, तबीयत ठीक है और सारे लोग ठीक हैं जनाब, कोई सॉन्ग तो सुना दीजिए। ओके जी, कोई नहीं, बहुत ज्यादा वाले सॉन्ग्स आपको सुनाएंगे, बस आप थोड़ा सब्र कीजिए। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज नोटेड, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। चलें जी, लगाएंगे सबके गाने। दोदाली हमारे साथ हैं, गुलाम फरीद बलोच भी हैं और आमिर कहते हैं मासूमा ये पोइट्री है, बदलता वो है जिसने सिर्फ सूरज से मोहब्बत की है। جو روح کو جو روح کا قیدی ہو وہ رہائی نہیں مانگتا. کیا بات ہے جی. اور فہیم شیخ ہمارے ساتھ جی موجود ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام ان مولا الاسلام ادر. اور یوگی بابا ہیں. السلام علیکم ڈوڈ. وعلیکم السلام ڈوڈی. جو میں سوچ رہی ہوں وہی ہیں آپ. عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں جی. گڈ مارننگ. اور نہ علاوہ فہیم کہتے ہیں بھاؤ کی آئے ہو صفا چاک آئے ہو صفا چاک قلم سلیٹ تام ادا کی آئے ہو. اور محمد علی خوسو ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. اور نہ علاوہ فہیم کہتے ہیں گانوں بدھرائے جو سب بھی نہیں کہ اچھا سائیں گانے جی لگی ہوئی ہاں یہ جو پوسٹ کی لائک شیئر کیا تھا وہ. چلے میں کوشش کروں گی گانے لگا دیں گے آپ لوگوں کے. سرفراز علی سولنگی ہمارے ساتھ ہیں جی. تھینک یو جی تھینک یو. اور جانی ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں ماشاء اللہ شو تھینک یو. اور ہیں جی ہمارے ساتھ امان اللہ شیخ. وعلیکم السلام کہتے ہیں میں بہت دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. آپ کیسی ہیں آپ ہمارے گاؤں میں. اچھا کہتے ہیں اب ہمارے گاؤں میں چاول کی کھیت کا کام شروع ہو چکا ہے یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے اب آپ تھوڑا فری ہوں گے اس وجہ سے آپ ہمارے پروگرام میں آنا اسٹارٹ کر دیں گے. بہت شکریہ جی آئیے گا بسم اللہ. اور عامر کہتے ہیں میں نے آپ کا نام رکھا ہے معصومہ. ناراض تو نہیں ہے نا آپ جو نام رکھا ہے آپ کا. نہیں بس صحیح ہے. اور محمد زمان ہمارے ساتھ ہیں. گڈ آفٹر نون بھائی جان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. ایسے ہی آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور ذرا بتائیے کون کون کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ٹاپک کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک انسان کو دوسرا موقع دینا چاہیے یا پھر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے لگے. اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے. سنتی رہیے اور ساتھ دیجیے. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو.
3: اٹس 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal jeka de kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
6: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
5: اب درد کو کہیں الوداع
6: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
5: جی ہاں
6: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
6: یہ آئنٹمنٹ
5: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
6: درد سوزش
5: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
6: اعصابی درد جوڑوں کا درد
5: گردن اور کمر کی تکلیف
6: پٹھوں کے کچاؤ موچ
5: چوٹ پرانے زخموں کے درد
6: اور جلدی جلن میں مفید
5: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
6: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
5: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
6: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
7: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज
3: मेंटेन रहती है। अगर देखा जाए तो आप लोग गोरेपन के चक्कर में अपने चेहरे का ना मतलब थोड़ा हशर नशर कर चुके हैं, तो गोरापन बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन गोरापन तो मिलेगा लेकिन साथ साथ आप लोगों के चेहरे के प्रॉब्लम्स भी दूर होते रहेंगे। तो व्हाइट एज प्योरी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा है, मिल्क है, और ये सब चीजें मिलकर आप लोगों की हुस्न को बढ़ाएंगे और आप लोगों को एक अच्छा सा ग्लो देंगे। तो व्हाइट एज प्योरी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, और व्हाइट एज प्योरी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर आप दूर करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूरी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, और व्हाइट एज ब्यूरी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूरी सोप भी मिल रहा है, और व्हाइट एज ब्यूरी सोप के अंदर भी भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप सोप नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश भी मौजूद है। तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी है जो कि क्रीमी फेस वॉश है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है। तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा परेशान है, आप टीनेजर हैं या फिर आपकी एज चाहे कितनी हो, लेकिन ये एक्नी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ते, एक्नी आपका जो है वो जीना हराम कर चुके हैं, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वाले फायदे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात की अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएंगे तो आप लोगों के सिर्फ एक्नी खत्म नहीं होते बल्कि आपके चेहरे पर कोई भी चोट का निशान है, जलने का निशान है, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई देखा जाए तो आपके चेहरे पर निशानात काफी ज्यादा आ चुके होते हैं, रिंकल्स बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा ऐसे चेहरे पर निशानात जमा हो चुके हैं, तो जी वो भी खत्म हो जाएंगे जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लगाने के तरीके कार भी आपको बताते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हाइट एज लवली क्रीम का नाम ना लें तो कैसे हो सकता है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये जनाब इतना कमाल का प्रोडक्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये फेयरनेस क्रीम है और मेरा अगर आप कहा माने तो अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ घर का हर एक फर्द जो है ना वो व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। ये इतना काम का, इतना मजे का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि विटामिंस का जो है ना वो अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपकी खूबसूरती को एनहेंस करेंगे और आपकी खूबसूरती में जो ना वो चार चांद लगा देंगे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम अगर आप मेकअप से बचना चाहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, रेगुलर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको व्हाइट एज लवली क्रीम लगाने की बहुत जरूरत है, आप लाजमी व्हाइट एज लवली क्रीम लगाइएगा। और मजे की बात भी बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन जो है ना वो भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि अब आपको अलग से कोई सनब्लॉक लगाने की जरूरत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाएंगे तो बस काफी होगा, इनफ होगा, और आपकी खूबसूरती जो है वो बस बढ़ती रहेगी और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि आपका जो जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाते हैं और आपके चेहरे पर जो सूरज के खतरनाक असरात आते हैं तो उनसे भी आपको व्हाइट एज लवली क्रीम बचाने वाली, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। तो लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, अंकल, अंटियां सब ही व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए और जनाब अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और लगाने के तरीके कार बिल्कुल जी, आप व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप अपना फेस वॉश करके फिर इस्तेमाल करेंगे, सुबह को हो, दोपहर को, रात को, जब दिल करे। बाकी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, इसे आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, दो मरतबा लगाइएगा ठीक है, लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा। बाकी बात है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम लगाइएगा, सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए अच्छे से, उसके बाद व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही ये फार्मूला, अगर आप ट्राई करेंगे यही तरीके कार अगर आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल सही, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595-1379-5 اوکے جی, اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے رہیے, خوبصورتی کو ویلکم کیجیے کیونکہ آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کے میسجز ندلی کے لیے, السلام علیکم سویٹ آشے, ویلکم ٹو شو, طبیعت کیسی, امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گی, میں بھی ساتھ ساتھ ہوں. اوکے, جانوں کو ویلکم کرتے ہیں. محمد علی کھوسو ہمارے ساتھ ہیں, محمد علی کھوسو بھائی آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. ایوب بھٹی بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, ویلکم ہو گیا جی. یوگی بابا کہتے ہیں کیسی ہو, امید ٹھیک ٹھاک ہوں گی, ہم تو بڑھیا ہیں اللہ کے کرم سے, شکر رپا کا, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یوگی بابا آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں آج سے شو میں ہم بھی شامل ہوں گے, کوئی ایشو تو نہیں؟ نہیں نہیں بھائی, مجھے تو اچھا لگا کہ آپ واپس آ چکے ہیں پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ عادل کہتے ہیں آج یہ لاسٹ میں گانا لگائیے گا. اوکے, میں کوشش کروں گی جی, لاسٹ میں گانے لگائیں گے, جتنے بھی سیڈی ہو آپ ایسا کیجیے گا, لاسٹ میں ذرا مجھے ریمائنڈ کروا دیجیے گا جتنے بھی گانے آپ نے سیڈی والے بولے. اوکے جی, اسی بات پر پوسٹ کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے. اور گانے میری لسٹ میں ہیں تو ذرا ہم ساتھ ساتھ گانے بھی سنتے رہیں گے نا, گانے کا بھی مزہ لیتے ہیں تاکہ چس آ جائے بھائی. اچھے اچھے گانے جو میری لسٹ میں لگائے ہیں تو سننے تو بنتے ہیں. اور ندلی کہتی ہیں ہائی بھیا واسکن ہیا, گرمی کم ہو گئی ہے آج کل, یا یہ سچ ہے؟ تھوڑا تھوڑا فرق ہے مجھے لگ رہا ہے شاید, زیادہ نہیں پتا.

बीटी प्रोग्राम है वाइट एशियन एशियन ब्यूटी शो। चाचा खालिद कहते एक तो और मौका मिलना चाहिए टॉपिक आंसर ना करें चाचा ना करें। साठ मना कयो हुआ

हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम डीआईजी ऑफिस लाड़काना से आप हमारे साथ ही माय फ्रेंड अल्लाह बख्श और हसीब रिहान आसिफ रजीब मोहसिन फ्रॉम मिठू दीरो शो वेरी नाइस थैंक यू जी वेलकम करते हैं आप सब भाइयों को और निधि कहती हैं किस चीज का मौका यानी कि एक इंसान आपके साथ बुरा करे और फिर आए आपकी जिंदगी में और बोले कि मुझे माफ कर दो आइंदा नहीं होगा ऐसा तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं सिंपल सी बात पूछी है ओके जी आप साथ साथ ये भी बताते रहे कि वाइटेज प्यूरी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है अपनी जानिब और आप इस्तेमाल करने लगना शुरू कर चुके हैं क्योंकि ऐसे है ना कि बहुत से लोग पहले जानते हैं समझते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ही बने आप पहले चीजों को जो है ना वो समझने की कोशिश किया करें उसके बाद आप जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करें खास तौर पर जब आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर जो ना थोड़ा सा सोच लेना चाहिए तो अगर आप भी वाइटेज प्यूरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जनाब व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप के लिए तो व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं आपको मजे की बात है कि हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको जब मिल रहा है तो फायदा उठाइए उससे और जी इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट क्या बात है क्या बात है भाई बड़ा खुश है और डूडी कहते हैं इंसान के बो मौको बिल्कुल भी न मिलजे थो सो थो हाने वनी बकरियों चाराए असा बरूचन में एक पहाको है कम निकतो रखन विसर ता में ना असा में भी आए सबनी में आए सो तमा चो वैसे सही था अच्छा फहीम कहते हैं भाऊ अच्छा सा गाना चवंदा आयूं अच्छा सा गानो चवंदा आयूं आखिर में हलंदो आहे थोड़ी देर कंदासीं त लिस्ट फुल थी वेंदी वो असां काडे वञूं वैसे गाल में दम आ

तो सही है। मैं चाहूँ तू मेरे लिए ही बनी, मेरी जिंदगी में है तेरी ही कमी। रोहित भाई हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। सिमरा जी क्या हाल चाल है आपके? प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन होते हैं। फ्रॉम जकमाबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम।

योगी बाबा, बायोमेट्रिक की तो जरूरत होती है ना, चाहे हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें, समझ रहे हो? अंगूठो बाबा जरूरी है, जरूरी। आमिर कहते टॉपिक मसूमा, इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वो और ज्यादा हमारे दिल दुखाए, इसलिए हाँ। अच्छा ये फहीम कहते हैं, खूब समझते हो तुम भी मेरी अदाओं को फहीम, कि मेरी उठती निगाह को बगावत समझ लिया। अरे मैं तो तुझसे हाथ मिलाने को आया था और तूने उसे भी खंजर समझ लिया। वाह वाह।

नाइस बक्तली सियाल माँ ठीक है तामुदा की आयो। अच्छा मोहम्मद सलमान कहते हैं ट्रैफिक हालात पर मुनसर है, हर शख्स को दूसरा मौका देना जरूरी भी नहीं और हर बार इनका तब दिया जा सकता है जब वो अपनी गलती तस्लीम करे, उसे अपने किए पर हकीकी पछताव हो और वो अपने रवैये में वाज़े तब्दीली दिखाए और उसकी गलती से आपकी चलें जी बात कुल मिलाकर आपने सही कर दी है और बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर जरा हम अमल करेंगे। सदाम नहीं सदर दीन बहुत ज़ार हमारे साथ हैं, कहते हैं ओके ओके जी ओके। और वफा सदाम हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। इखलाक बलोच कहते हैं हाय सुधरा नाइस यो आंसर, हाँ मौका मिलना चाहिए शायद सुधर जाए। ना सुधरा तो कौन जिम्मेदार। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ हैं, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक है। और बताएं जरा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं या फिर नहीं? फहीम कहते हैं व्हाइट एज लवली क्रीम बेस्ट है। व्हाइट एज लवली क्रीम बाबा गाल तमाम बिल्कुल सही कही है। व्हाइट एज लवली क्रीम जे के मानू हणन पया उन्हें जला बेस्ट ही आयो तो तमाजी जिंदगी आसान बनजी वेंदी है। व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर जो है सब चीजों आयन जैसे कि तवा के सन ब्लॉक भी मिली वेंदो, इनके अंदर तवा के वाइटमिन्स की कमी अगर तवा इसके में मौजूद है तो वह भी पूरी थी वेंदी। आई तवा जी मेकअप जी अगर या आदत आए यानी कि खास कर खवातीन जी होंदी आयन कोई जॉब करनी आए तो तवा के मेकअप की जरूरत पवी तो उहा मेकअप की नीड होंगी खास कर गर्मी में तो तवा मेकअप लगाइंदा तो तवा की स्किन तमाम घनी खराब थी वेंदी है। सो मेकअप का थोड़ा जरा साइड अचो और व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करो तवा चुटकिन में रेडी थी वेंदा तवाजी स्किन ग्लो भी अची वेंदो और तवा खूबसूरती भी तवा के मिली वेंदी तवा शाइन कंदा रहंदा। तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक यानी कि मुझे तो यो चवण है हर एक इंसान की जिंदगी में होजन जरूरी है। व्हाइट एज लवली क्रीम ढी कम की शय अव सो इनके तवा लाजमी सब मानू इस्तेमाल करे दिसो ठीक है। हाँ कोई एज लिमिट भी ना है, बार जवान कुराड़ा हर कोई लगाए सके तो।

आबिद बिनोई हमारे साथ हैं. हेलो, कहते इट्स सो गुड शो, थैंक यू. और चाचा खालिद कहते हैं कि वैसे हजरत आदम को अल्लाह पाक ने दूसरा मौका नहीं दिया और जन्नत से निकाल दिया. ये टॉपिक आंसर क्या पता. लेकिन माफ तो कर दिया था ना. और उसके अलावा चले इसके ऊपर वैसे बहुत लंबी सी बात हो सकती है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है. तो मैं चाहती हूँ कि आपके जल्दी जल्दी कमेंट रीड कर लेते हैं. सरफराज क्या कहते हैं, बाजी हमारे लिए अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाएगा. बिल्कुल सी लगाते हैं. अच्छा उनका अलावा हमारे साथ हैं. चाचा कहते हैं आप क्यों नहीं करती वाइटिश लवली क्रीम और डी स्किन क्रीम के एड्स या सोप या आपको अलो नहीं. क्या मतलब अच्छा खीसो कयो मां पाण सची उधर. अच्छा इकलाक भाई कहते हैं सिद्रो पे आप सिंधी हो हाजिर साईं सो हुकुम कयो. और बलोची गानो तो मुझे इजी लगल आहे सो केड़ी गाल कयो था. तमाम बस पोस्ट के लाइक शेयर के ना हलो. आई बुधायो तमाम वाइटेज जो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया. आई वाइटेज का प्रोडक्ट अगर तमाजे करीबी जने स्टोर से अवेलेबल नाए तो पोई तमाम डायल कयो 03-15-799-0595-315-9-95-95 नंबर डायल कयो जे तमाजे करीबी जने स्टोर से वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वने. सो अवेलेबल करायो जल्दी जल्दी ताकि तमाम भी इस्तेमाल करी सको, तमाम भी खूबसूरती हासिल करे सको. टाइम थियो आहे न्यूज ब्रेक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी जो तमाकारी न वंजो इते बैठा हो जुमा ओही वनी ओही मोटा दे सुंदरी प्रोग्राम वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो.

0: भारतीय शहरी मारिजी वियो। अठ जख्मियुनि मां बि छह भारतीय ऐं ब॒ यूक्रेन शहरी शामिल आहिनि।
1: दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। कराची दहशतगर्द जे निशाने ते आहे। रेंजर्स जे हमले में मुलिस जा सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध आलमी सड़पकारी जो मर्कज़ बणजी रहियो आहे। हुकूमत सड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कार्रवायुनि सबबि अटे जे अघ में इस्तक़ाम आयो आहे।
0: आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावला कोर्ट में फोर्सिस ऐं शहरियुनि ते हमिलो। हिकु रेंजर सहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मतियाल मीरवा में बस अॾे में ऐं रावला कोट भरिसां शहरी आबादीअ ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिश कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। माहिरनि मूजिबि पाबंदी मड़ियल तंज़ीम जे हथियारबंद जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अणटर थी वियो आहे।
1: कराचीअ में फुर मज़म्मत ते क़तल थियल डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शुरू मां गिरफ़्तार। पुलिस सागर ऐं रामचंद खे गिरफ़्तार करे जांच शुरू करे छॾी। आकाश जी मर जूं आख़िरी रस्मूं जारी। वारसनि चयो आहे त आकाश जी आख़िरी रस्मनि बाद केस दाख़िल कयो वेंदो।
0: जैकमाबाद मां पुलिस हथां गिरफ़्तार थियल एमएनए एजाज़ जखराणीअ जो नंढो भाउ आज़ाद जखराणी कराची मुंतकिल। अॻोणे एमएनए मरहूम बाबल खान जखराणीअ जे नंढे पुट मीर आज़ाद खान जखराणीअ खे जैकमाबाद पुलिस सख़्त सिक्योरिटीअ में कराची जे दरख़्शां थाणे ते मुंतकिल कयो। एमएनए मीर एजाज़ हुसैन जखराणीअ जे नंढे पुट मीर ज़ैद खान जखराणीअ जी वफ़ात बाद एजाज़ हुसैन जखराणी ऐं संदसि नंढे भाउ मीर आज़ाद खान जखराणीअ में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ।
1: कनकोट में लोलाई बिरादरी जे बिंदुनि में संगावती तकरार सां झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ फौजो लोलाई में संगावती तकरार सां धुरियुनि में झेड़ो, फायरिंग सबबि मुरीद लोलाई मारिजी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। रादण भरिसां प्लाट जी तकरार सां घर ॿारां सुतल ॻोठाणो तालुब कलोड़ो क़तल। वारसनि जो लाश रखी धरणो, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। खैरपुर नातन शाह जे ॻोठ आडो खान गाड़ी में हथियारबंदनि तां नौजवान मोहम्मद बलोच क़तल। कारण मालूम न थियो। हिकु शक जी बुनियाद ते हिकु ॼणो गिरफ़्तार।
0: सिंध में ज़रई पाणीअ जी खोट बरक़रार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुराद वाह में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ डीसी आफ़ीस आॾो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली भरिसां बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। मुराद वाह जे पोछड़ ताईं पाणी ॾियण जो मुतालबो। कड़ियो घंवर में इमाम वाह बारगाह जागीर में पाणीअ जी शदीद खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो। कराची बदीन रोड ते धरणो। खेबर वेझो ॻोठ पुनू हिंगोरो जे रहवासियुनि सुई कुंदर शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
1: उमरकोट वेझो 13 साल नींगर जो वाटर कोर्स मां रसो बधल लाश। ॻोठ मोहम्मद हसन पंजाबी में 13 साल नींगर अशोक कोली जो कंध में रसो बधल लाश मिलियो। पुलिस मूजिबि वाके जी जांच कयूं पिया। हिन वक़्तु कुझु बि नथो चई सघजे।

0: हफ़्तो अॻु कराची भरिसां समुंड में किरी तबाह थियल कार्गो जहाज़ जी मिठाणे वासी को पायलट गायबाना जनाज़े निमाज़ अदा। ॻोठु ठोड़ा शरीफ़ में ख़ुद जतोई जी गायबाना जनाज़े निमाज़ अदा कई वई। को पायलट जी जनाज़े निमाज़ में इलाइक़े वासियुनि ऐं सियासी समाजी अॻवाननि शहीद पायलट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविद
4: ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
6: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: It's 2:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyajo Show. A product by Biocon International Pakistan.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो बिल्कुल सी, अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर कितनी ज्यादा जो है वो खास चीजें आपके चेहरे पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ आप लोग जो है ना मुझे आज बताते जा रहे, मैंने जो टॉपिक आप लोगों से पूछा है तो उसका जवाब देते जा रहे हैं। सवाल मैंने कुछ यूं पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी ऐसी बात है जो कि वाकई कहीं ना कहीं जो है ना हमें थोड़ा कंफ्यूज कर ही देती है। तो आप बताएं आपका क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 888-1 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो फेसबुक वाली जितनी ऑडियंस है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे ऐसा हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जो है ना हमारे प्रोग्राम पहुंचे, और हमारे प्रोग्राम पहुंचने का मकसद ये है कि वो जान सकें कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया, सो नाउ आप लोगों को बताने की बारी आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताना शुरू करूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए बनाई गई है, और खास करके ऐसा सीन बन जाता है ना कि कई मरतबा हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है ना वो अक्सर इस चीज में होते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं हम लगा सकते। तो वाकई आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए अपनी स्किन को लेकर, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आपको बताने लगी हूं जो आप लोगों की अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर भी आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सेंसिटिव स्किन के मुताबिक भी तैयार किया गया है, और जनाब सबसे बेहतरीन बात कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, यानी कि इसे जो है वो फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर आपको विटामिन ई बीड्स मिल रहे हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जनाब। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है, और ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि आप लोगों के चेहरे की जो स्किन है ना वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट भी रहेगी। जैसे कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अब आप बहुत से लोग सोचेंगे यहाँ पर कि भाई ये क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, तो ऐसा कोई सी नहीं है। जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया था ना तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं और सारे लोग लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर लोग जो है इसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी, सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे जो ना नतायज देती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वाकई आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको मिलता है अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपकी जल्द को चमकदार बनाने के लिए और डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, आपकी खूबसूरती में जो है ना वो निखार आना स्टार्ट हो जाता है। और मेरा अक्सर ये आप लोगों को कहती हूँ कि भाई आपकी जो खूबसूरती है ना वो ऐसे नहीं कि बस आप ये सोचा करें कि हमें बस गोरापन मिल रहा है तो हम खूबसूरत हैं। सिर्फ खूबसूरती का मतलब गोरापन नहीं होता, बल्कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए, बेदाग होनी चाहिए, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना हो, निशानात ना हो, तब जाकर आप मुकम्मल खूबसूरत बनते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से हटा देंगी और आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी। ओके, तो ये बात डी स्किन ब्यूटी क्रीम की थी। और इसके अलावा अगर हम डी स्किन फेस वॉश की जानेब आते हैं तो डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बता दें, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जब परचेज करें ना तो साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा। और जी, डी स्किन का फेस वॉश मार्केट में अब अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की स्किन जो है वो किस तरह ग्लो करेगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको खूबसूरती मिलेगी, लेकिन डी स्किन फेस वॉश से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती और ज्यादा जो है ना वो बढ़कर सामने आ जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात करें या फिर डी स्किन फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हाइलूरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो है ना इस तरह के सीरम्स ऐड किए गए हैं जो कि आपकी स्किन को क्लीन बनाएंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते रहेंगे।
اوکے سر جی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں تو ساتھ میں جی اسکن فیس واش بھی لگاتے رہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گی بہترین والی خوبصورتی. تو اسکن اگر سینسیٹیو بھی ہے تب بھی آپ جی اسکن بیوٹی کریم اور جی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے رہیے تاکہ آپ کو ملے وہ والا حسن جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں دین آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595 نمبر ڈائل کریں تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی دی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اویلیبل ہو جائیں اور دونوں پروڈکٹ ہی ساتھ میں پرچیز کریں تاکہ آپ کو مکمل خوبصورت

आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डीसेंट ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीसेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके, तो पैनल की जाने बातें हैं, आपकी कुछ मैसेजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ कौशल मौजूद, कहती हैं जन्नत आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग तो सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल गाना सुनाएंगे। और मिर्पो खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम बाजी शो आपका सुपर है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मिर्पो खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, बिल्कुल जी लगाते हैं कोई भी गाना। रसूलाबाद का आबिद हुसैन शबानी भाई है, वालेकुम अस्सलाम। अदी लिखते हैं कि अदी जेको दिलता लही वयो तो पोइन के मौको छाजो डींदा, सही गाल है वैसे। और ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल है, कहती है अस्सलाम वालेकुम सुजो जानी, शो मौसम की तरह औसम है, थैंक यू। कहती है अस्सलाम वालेकुम सुजो जानी, शो थैंक यू बहुत अच्छा है, एक ही मैसेज को आपने दो से तीन मरतबा शेयर कर दिया है, थैंक यू हैप्पी गर्ल। कहती है आज का टॉपिक क्या है, मुझे लग रहा है आपने सुन लिया होगा। और फारूक जुनी जो हमारे साथ है, अच्छा पिटारो से आप हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा मुस्कान जी, उम्मीद तो ठीक होंगी आप, जैसा नाम वैसा। ओके जी, ओके कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तमाम जबरदस्त शो आपका। तो ओके जी, फारूक भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू। फहा डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाबशाह, कहते हैं सलामती शो तमाचो नाइस आए, थैंक यू भा। ओके जी, सो हमने सुना यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हम वो भी सुनेंगे, जीशान रोखड़ी की आवाज में ये गाना होने वाला है। और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट लगाया या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, आप ये हमारे साथ जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि भाई जान जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो वाकई खूबसूरत होना चाहते हैं। और ये बात जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिर्फ खूबसूरती जो ना वो गोरापन नहीं होता, बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो होती ना वो ऐसा है कि आपके चेहरे पर एक्नी नहीं होना चाहिए, निशानात नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे की स्किन बिल्कुल ग्लोइंग होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए और रिंकल फ्री होनी चाहिए, तब जाकर आप बनते हैं मुकम्मल खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए।

दर्द दिल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वाले को असलाम कहते हैं, स्वीटी को खुश आमदीद के साथ। लदली कहती हैं, हम टॉपिक में माफ तो कर दूंगी बट मैं फिर पहले जैसी नहीं रहूंगी। उसके साथ माफ करना अच्छी बात होती है बट दूसरा मौका देना भी नहीं चाहिए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। ओके जी। और उनके अलावा हमारे साथ दर्द दिल कहती है कि खुदा करे तुम वो सारी जंगें जीत जाओ जिनसे तुम अकेले लड़ लड़ कर थक चुके हो, जो तुम्हारी उदासी का सबब बनते हैं। ओके जी। अली मुर्तजा अंसारी मर्सद मौजूदी, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून कहते हैं। और हिंसी अली मुर्तजा कहते हैं कि प्लीज लगाते हैं जी आपकी पसंद का भी गाना। और यहाँ पर हमारे साथ हैं एम अंसारी कहते हैं कि ये टॉपिक मेरे दिल के मतलब ये सिर्फ अखलाक भाई बात तो बिल्कुल सही कर रही हैं आप। और हैं जी हमारे साथ यहाँ पर गुलरेज अली चांदो कहते हैं माफ करना अच्छी बात है, माफ करना चाहिए इंसान को तो अल्लाह भी माफ करता है, इंसान कितना गुनहगार हो तो हम कौन होते हैं जो माफ ना करे। ओके कहते हैं सलाम, आप कैसी हैं? आज 2 साल के बाद आपके शो में आया हूँ, जो अच्छा है मास्टर मंजूर का गाना लगाइए। बिल्कुल जी लगाते हैं आपके लिए, थैंक यू आप हमारे साथ हैं। मूसा कोरी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते भाई को। बिलाल अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बिल्कुल भी मौक्यो नडियन घुरजे जेड़ा रो तेड़ा खत्मा। चले नहीं, बहुत शुक्रिया। और जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग, हाय सिद्रा जी आप कैसी हैं, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। चुप करके ओगरी सो गाना सुनिए, इस गाने के बाद जो है वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एशियन डीज़ ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 2:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध

ओके जी, आपने शाद बब्बर की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना सुना और इसी के साथ साथ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी। आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाए, वहां पर आप मालूम लीजिए वहां पर अवेलेबल है ये प्रोडक्ट तमाम। अगर मिल रहे हैं तो परचेज कीजिए, नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03157990595। बुढ़ी 315 79 9595 हिन नंबर ते तव्हांखे राब्तो करणो पवंदो। ऐं तव्हां कॉल कयो या मैसेज कयो हुननि खे ॿुधायो त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे ऐं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल कराइण चाहियो था। तो अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हां मूंखे ॿुधायो जे तव्हांखे इहा बि यानी कि तव्हां अगरि का बि ॻाल्हि पुछण चाहियो था, को अहिड़ो डाउट आहे जेको तव्हां क्लियर करण चाहियो था त तव्हां मूंखां पुछी सघो था। हुन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त इहो मूंखे ॿुधायो जे मूंखे ख़बर पए त मुंहिंजा कहिड़ा कहिड़ा लिसनर आहिनि जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो यूज़ कनि पिया। अगरि तव्हां वैसे इहा बि ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां थोरो क्रीमनि खां अवॉइड कंदा त तव्हां पहिरियां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए ॾिसो ऐं तव्हांखे सुठा रिज़ल्ट मिलनि। उन खां पोइ तव्हां डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम लॻाए ॾिसो, ठीकु आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सेंसिटिव स्किन वारनि जे लाइ बि ठहियल आहे, ख़ासि करे सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू लॻाइनि। ऐं हीउ डॉक्टर जे मशवरे सां तयारु थियल आहे, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु थियल प्रोडक्ट आहे। सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी स्किन सफ़ा वीआईपी थी वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिली वेंदी ऐं तव्हां शाइन कंदा रहंदा। ओके जी, सो कुछ आपके फीडबैक से वो जरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एम अंसारी कहते हैं अगर किसी का किरदार देखना चाहते हो तो उसे अख्तियार देकर देखो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। सैयदा बुखारी कहती है अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका नसीब अच्छा करे और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच सैयदा बुखारी, आप हमारे साथ। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ ही, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे साथ हैं जी बिलाल, कहते हैं कि मुठा मुश्किल वक्त में बदल जल्द चेहरा मु सदाई साथ डींदे सिर्फ खुदा के डिठो है, क्या बात है। अली मुर्तजा लिखते हैं कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। ओके जी, अब्दुल रजाक बलोच हमारे साथ है, दादू से आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है, यासीन खंड में सुन रहे हैं। दर्द दिल कहती है टॉपिक चंदा माफ कर देना चाहिए लेकिन मौका नहीं देना चाहिए। कहते ना जो मौका दे उसे कभी धोखा नहीं दो और जो धोखा दे उसे कभी मौका नहीं दो। ओके ओके जी, और कहती हैं कि आज मेरी कजन आपका शो सुन रही है, आयशा जाहिदा अस्मा अरीबा और मेरी छोटी सिस अलीजा भी, सबको वेलकम करते हैं। अच्छा, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं। बाजी सदरा आप कैसी हैं। बाजी हम आपके बड़े फैन हैं, आप चाहे हमारे गाने चलाएं या ना चलाएं लेकिन आपसे नाराज नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। और लिखते हैं कि आज कोई गाना नहीं, थैंक्स मेरे भतीजा है सरफराज अली सोलंगी, उनको सलाम कहना और जो आपका शो फेसबुक पर सुनते हैं। और नजीर सोलंगी है, आसिफ सोलंगी एंड मुबशर सोलंगी, सबको वेलकम जी, थैंक यू। और हमारे साथ है मुनव्वर भाई, मुनव्वर अली मुगल कहते मौका देना चाहिए, मेरा अल्लाह भी इंसान को कितने मौके देता है तो इंसान क्या चीज है। ओके वेरी नाइस। हैप्पी गर्ल कहती है सिडू जानी माफ कर देना चाहिए, माफी अल्लाह को पसंद है। ओके वेरी नाइस। और कहती है कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती लेकिन मैं जो है ना अपनी बुआ को गिफ्ट जरूर करूंगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी उन्हें गिफ्ट दीजिएगा, ठीक है। और सजाद अली जमाली है, अब्दुल वकील जमाली नवाबशाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम टू टूसल से मौलाई मुजाहिद बोजार, कहते हैं सिडू जी आप कैसी हैं, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। चाचा खालिद बिल्कुल फेसबुक पर थोड़ा इशू आ गया, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं आप लोगों से, और थैंक यू।

बिल्कुल जी, सब प्रोग्राम आप सुनते हैं जनाब, अगर आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से जो है ना वो स्पॉन्सर्ड किया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर किया करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ताकि सुनने वाले लोगों को पता चले कि बाकी जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट और उनको कितने अच्छे वाले रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, हम क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए तैयार की गई है। ज्यादातर जो है ना आप लोग अगर इस मामले में थोड़ा सा ख्याल रखते अपनी स्किन का कि भाई हमारी स्किन के ऊपर एक्नी ना आ जाए, एक्नी प्रॉब्लम आ जाते तो फिर आप बड़ा परेशान हो जाते, वैसे होना भी चाहिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है और पाकिस्तान में बहुत ही कम, यानी कि 3-4 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं में शामिल है जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाइए जिसके अंदर जो है ना आपको हाइलोरोनिक एसिड सीरम मिलेगा, और ये इतना अच्छा सीरम होता है जो कि आपकी स्किन को क्लीन रखेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हमारी स्किन जो है ना वो रूखी सूखी सी हो जाती है और ऐसा फील होता है कि भाई क्या करें कि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज दिखे, हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे। तो आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करके अपनी स्किन को जो है ना परफेक्ट बना सकते हैं। तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश। ओके जी, लास्ट ट्रिक हमने लिस्ट में लगा लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और अब्बास महर हमारा शो सुन रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इसी के साथ। अच्छा, हैप्पी गर्ल कहते सिद्धो जानी, अम्मी को आपका हंसना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच अम्मी को, थैंक यू बोलिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होती है जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात असांजी थे 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 जो इलाही सो ख्याल रखना, आई कहती का गलती थी मुझे तो माजरत कहीं था, जिना फीडबैक दे जी वन सभी का माजरत कहीं था। सो मोकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत, सलामत अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान में फोर्सेज जो दहशतगर्द इंकलाब करेल ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक चार दहशतगर्द जहनम भीड़ा। ऑपरेशन दौरान बाजी पर दहशतगर्द जो अंग 121 थी पो। सिक्योरिटी जारी मौजूद बलोचिस्तान में पाक फौज एफसी पुलिस जो करेल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्द मारजी पे। ऑपरेशन शाबान में मारजीपल दहशतगर्द जो अंग 83 थी पो। गडल ऑपरेशन दौरान मारजीपल दहशतगर्द जो अंग 121 थी पो है।
2: कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो। हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण की तस्दीक। हमले के मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दन दोह जो भी एतराफ करे वरतो। पुलिस ऑफिसरन सा गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वजीर ज़ियालंजार चयो आहे ते रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफगानी ए एक बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स के मास्टर माइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो आहे। एसएसपी सीटीडी चयो ते हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वही। दहशतगर्दन में जानान अब्दुल हादी उमर फारूक ए उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान के जख्मी हालत में गिरफ्तार कयो वयो। दहशतगर्दन के अफगानिस्तान का बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुंचाया वयो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथा गिरफ्तार कारी बशीर दोह जो भी एतराफ कयो आहे।
1: अमेरिका ईरान विच में अपने हुरमुज से शुरू थे चिकटान खत्म न थी। बिन्हीं मुल्कन जा एक पेजे थाकन ते मिजाइल हमला जारी। अमरीकी फौजी लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहरों से बमबारी। सेंटका मूजिब बोशर छाबार जासक कुनार्क अबू बूसा ए बंदर अब्बास से हमला किया गया। हमलों दौरान ईरान के दिफाई निजाम ड्रोन ए मिजाइल थाकन देरी सलाहतन के निशानों बनाया वो। ईरानी फौज जब अमरीकी अड्डन से जवाबी वार बहरीन एर्दन में अमरीकी अड्डन के निशानों बनाया। पाकिस्तान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका के अल जफीर वे अड्डे के निशानों बनाया वो है। अपने हुरमुज पार कर बेड़न के भी नाकारा बनाया वो है।
2: बिन बहरी जहाजन ते ईरानी हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वो 8 जख्मी थे। गडियल अरब इमारतन के दिफा वे वजारत मूजिब अबन हुरमुज वेझो ईरानी फौज बिन बहरी बेड़न के निशानों बनाया है। हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वो 8 जख्मी में 6 भारतीय ए 2 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं।
1: दहशतगर्द मुल्क के नुकसान पहुंचाने चाहन था। कराची दहशतगर्द निशाने ते है। रेंजर्स के हमले में सब जवाबदार गिरफ्तार थी गया है। कराची में मीडिया से गाले वे वजीर मुराद अली शाह सिंध आलमी सणपकारी जो मरकज बणी रहा है। हुकूमत सिणपकार के बेहतर माहौल फराम कर पुरजम है। कणक जखीरो कर खिलाफ कार्रवाई क्यों पा। हुकूमती कार्रवाई सबब अटे के अग में इस्तेखाम आयो है।
2: आजाद कश्मीर में पामदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हथियारबंदन जो रावाला कोर्ट में फोर्सेज ए शहरों ते हमलो। एक रेंजर सहलकार शहीद एक जख्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी के हथियारबंदन मतियाल मीरवा में बस अडे ए रावाला कोर्ट भरसा शहरी आबादी ते हमलो कयो। फोर्सेज हमलो रोकण की कोशिश कई ते हथियारबंदन जदीद हथियार सा फायरिंग कई। माहिरन मूजिब पाबंदी मड़ियल तंजीम के हथियारबंद जथन खिलाफ एक्शन अंटर थी वो है।
1: एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो मौलाना फजल रहमान के बयान से सख्त रद्द अमल। खालिद मकबूल सदीकी चो कौमी मफाद में हर सियासी मफाद का मथा होने घुर्जे। पाक फौज ए शहीद के कुर्बानी की तनकीद करण या सवाल उठान कौमी वहादत लहानजकार है। पाक फौज पेशेवर सलाहित कुर्बानी के करे पाकिस्तान की आलमी सतह से इज्जत ए वकार मिलो है। वतन सरहदों के तहफुज ला जान नजरानो पेश कर शहीद कौम जो फख्र है।
2: सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में घोटी जिले में पंजाब के जहरीले पानी की छोड़ खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधड़ी। अदालत पारा तलब करण बावजूद ऑफिसर के पेश न थियण ते कावड़ जो इजहार। सिंध ए पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज समेत बेन ऑफिसर जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। जस्टिस जुल्फकार अली सांगी ए जस्टिस अरबाब अली हकड़ो ते बदल आईनी बेंच बुधड़ी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी सिंध ए चीफ सेक्रेटरी पंजाब फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब समेत लागापियल खातन के ऑफिसर जा 50-50 हजार रूपये जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कया। अदालत रिमार्क्स डींदे चयो त छा इंतज़ामी ऐं बिया आफिसर पाण खे अदालत खां मथां समझनि था। ही नाज़ुक मामलो आहे। ज़हरीलो पाणी इंसाननि तोड़े ॿी हयातियुनि हयातियात लाइ मसलो बणजी चुको आहे। आफिसर पेश न थी रहिया आहिनि।
1: कराची में फुर मज़म्मत ते क़त्ल थियल डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शुरू मां गिरफ़्तार। ज़रनि मूजिबि पुलिस सागर ऐं रामचंद खे गिरफ़्तार करे जांच शुरू करे छॾी आहे। मक़तूल आकाश जे वारसनि चयो आहे त आकाश जे आख़िरी रस्मनि बाद केस दाख़िल करायो वेंदो। डॉक्टर आकाश खे गुज़िरियल ॾींहुं फुर मज़म्मत ते कराची में क़त्ल कयो वियो हो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
7: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
6: अब दर्द को कहें अलविदा
7: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
6: जी हाँ,
7: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
7: ये ऑइंटमेंट
6: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
7: दर्द, सोजिश
6: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
7: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
6: गर्दन और कमर की तकलीफ,
7: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
6: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
7: और जल्दी जलन में मुफीद।
6: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
7: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
6: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
7: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
8: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
9: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
8: GAFM नेटवर्क,
9: सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: हर दिन हर पहर। एक सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम
0: आप सुन रहे हैं ZFM।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: Macrino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मत मांगो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अठ जख्मी थे आहिन गडियल अरब इमारतन जी दिफा वारी वजारत मौजूब अपना हरमज वेझो ईरानी फौज बिन बहरी बेड़न के निशानो बनाया है। हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मार वो अठ जख्मी मां भी छह भारतीय ब यूक्रेनी शहरी शामिल आहिन।
3: दहशतगर्द मुल्क नुकसान पहुंचाने चाहन था। कराची दहशतगर्द निशाने ते है। रेंजर्स हमले में सब जवाबदार गिरफ्तार थी वहां। कराची में मीडिया से गलते वे वजीर मुराद अली शाह चौधरी सिंध आर्मी सड़ककारी जो मरकज बणजी रो है। हुकूमत सड़ककार के बेहतर माहौल फराहम करने पुरजम है। कणक जखीरो करण खिलाफ कार्रवाई क्यों पाया। हुकूमती कार्रवाई सबब अटे के अग में इस्तेमाल आया है।
2: आजाद कश्मीर में पाबंदी मरियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हथियारबंदन जो रावला कोर्ट में फोर्सिस ए शहरों ते हमलो। एक रेंजर सहलकार शहीद एक जख्मी। पाबंदी मरियल एक्शन कमेटी के हथियारबंदन मेत्याल मीरवा में बस अडे रावला कोर्ट भरसा शहरी आबादी ते हमलो कयो। फोर्सिस हमलो रोकण की कोशिश कई तो हथियारबंदन जदीद हथियार से फायरिंग कई। माहिरन मौजूद पाबंदी मरियल तंजीम के हथियारबंदन जथन खिलाफ एक्शन अंटर थी वो है।
3: एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो मौलाना फजल रहमान के बयान से सख्त रद्द अमल। खालिद मकबूल सदीकी चो तो कौमी मफाद हर सियासी मफाद का घुर्जे। पाक फौज ए शहीदों के कुर्बान से तनकीद करण या सवाल उठान कौमी इबादत लाए हानिकार है। पाक फौज के पेशेवर सलाहितन कुर्बानन के करे सिंध पाकिस्तान की आलमी सतह से इज्जत ए वकार मिलो है। वतन के सरहदों के तहफुज लाए जान जो नजरानो पेश कर शहीद कौम जो फख्र आन।
2: सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में घोटकी जिले में पंजाब के जहरीले पानी की छोड़ खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधड़ी अदालत पारा तलब करण बावजूद ऑफिसर के पेश न थियण ते कावड़ जो इजहार। सिंध ए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी समेत बेन ऑफिसर जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। जस्टिस जुल्फकार अली सांघी ए जस्टिस अरबाब अली हकड़ो ते बधल आईनी बेंच बुधड़ी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी सिंध ए चीफ सेक्रेटरी पंजाब फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब समेत लागापियल खातन के ऑफिसर पंजा हजार रूपये जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कया। अदालत रिमार्क्स डींदे इंतजामी ए बया ऑफिसर पान के अदालत का मथाओ समझन था। यह नाजुक मामलो है। जहरीलो पानी इंसानन तोड़े बी हयातयात लाए मसलो बणजी चुको है। ऑफिसर पेश न थी रहा।
3: कराची में फुरमजमत के कतल थियल डॉक्टर आकाश केस जवाबदार जामसूरी में गिरफ्तार। जरन मौजिब पुलिस सागर ए रामचंद के गिरफ्तार कर जांच शुरू कर छी। मकतूल आकाश के वारसन आकाश के आखिरी रस्म बाद केस दाखिल कराया वो। डॉक्टर आकाश के गुजरियल डी फुरमजमत के कराची में कतल किया वो हो।
2: भोजपुर में लोलाई बिरादरी के बिन धुरी में संगावती तकरार तां जेड़ो एक जेड़ो कतल। गोठ फौजी लोलाई में संगावती तकरार तां धुरी में जेड़ो थियो। फायरिंग के नतीजे में मुरीद लोलाई मारजी वयो एक जेड़ो जख्मी थियो। राधन भरसा प्लाट के तकरार तां घर बाहर सुतल गोठानो तलब तालिब कलोड़ो कतल। वारसन जो लाश रखी धरणो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। खैरपुर नाथन शाह के गोठ आढ़ो खान गाडाई में हथियारबंदन हथां नौजवान मोहम्मद बलोच कतल कारण मालूम न थियो। शक की बुनियाद से एक जणो गिरफ्तार। लाड़काने के गोठ बगन कोराई में पुराने तकरार तां पोरेत जाहिद कोराई कतल। मकतूल पोरेत के वारसन जो जवाबदार की गिरफ्तारी लाए धरणो। जाम शोरो वेझो अलमंजर पुल वट हथियारबंदन की रक्षा ते फायरिंग ड्राइवर कतल। पुलिस मौजूद मकतूल रक्षा ड्राइवर अब्दुल रहमान जो तालुक हैदराबाद जो रहाकू आए।
3: सिंध में जरी पानी की खोट बरकरार। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा ए धरणा। हैदराबाद में बदीन जिले के आबादकरण जो पानी की खोड़ चोरी खिलाफ चीफ इंजीनियर कोटली बेराज के ऑफिस में एहतजाज। सुल्तानीबाग पुथली के आबादकरण पानी तरन खिलाफ डायरेक्टर लेफ्ट बैंक ऑफिस बेराज कॉलोनी हैदराबाद आदो धरणो हयो। कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक पारा मुरादबाग में पानी कोट खिलाफ डीसी ऑफिस आदो धरणो हयो वो। टंडो गुलाम अली भरसा भी पानी कोट खिलाफ आबादकरण जो धरणो। मुरादबाग के पुछड़ ते पानी डण जो मुतालबो करो। गबर में इमामबाद जागीर में पानी के खोट खिलाफ आबादकरण जो धरणो। खैबर वेझो गोठ पुनु हिंगोरो वासिन सुई कुदर शाख में पानी खोट खिलाफ एहतजाज। लाड़काने में अवामी वर्कर्स पार्टी पानी खोट खिलाफ एहतजाज कयो।
2: सिंध में 79 दवाओं ने सिरिंजिस जा नमूना गैर मयारी जाली करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी मुख्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाओं ने सिरिंजिस जा 79 नमूना गैर मयारी जाली करार डेई छा। रिपोर्ट मूजिब 2461 नमूनन मां 79 नमूना मुकर्र करार मयार ते पूरा नल था। 30 आटो डिसेबल सिरंजू गैर मयारी जाली आहिन। आटो डिसेबल सिरंजू रुगो एक भेरो इस्तेमाल लाए हुंदियूं आहिन, पर फराहम कयल कुछ सिरंजू मुकमिल तौर आटो डिसेबल न हुजण सबब बीहर इस्तेमाल थियण जो खर्चो आहे। 20 हर्बल शयुनि में एलोपैथिक जुज़न जे मौजूदगी मिली आहे, जड॒हिं त 9 दवाऊं पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वटि रजिस्टर्ड न आहिनि थियल, जेके इंसाननि लाइ हानिकार थी सघनि थियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: खुशी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: या पठों की जिन से परेशान हैं,
2: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: मोहम्मद उमर जाता है 24 घंटे इमरजेंसी, जदीद लेबोरेटरीज, जदीद ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सर्जिकल और मेडिकल सहूलियत, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड, नज़्द डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए 03-4134-29-824।
5: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन

0: डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी आज ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, इतवार तातील है और जुम्मे को जाते हैं। एड्रेस: सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आंखों का अस्पताल, 0303-261-70।
1: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
2: का शहर खास
3: मीरपुर वटाए मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधी करापते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 आई 0333-3722-0 71।
1: मीरपुर खास की आवाज,
4: सिंध का हर चप हर गोशा,
5: जी ए FM 88।

0: तो कि मेरे आते ही गुड हो गया। नहीं जी नहीं जी, आपके आने से पहले हो चुका है ये गुड जो हुआ है। मुझे अजीब सा लगता है, चीजें जो भी लेनी है ले लो, ये क्या। ओके अक्सा, बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक को फॉलो किया। गुड इवनिंग, हाय आरजे गुलनाज जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग टू यू, वेलकम इन अवर शो, आई एम फाइन थैंक यू। अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपने प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार किया, वेलकम कहेंगे आपको, शुक्रिया आपका। हाउ आर यू गुल 78 मोरी से, हमीर चंद, किशोर कुमार, हीरा लाल, पवन कुमार, अरबाब अली, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, और डीके गणेश चंद, सैयद अहमद, ताज एम अब्बास को आपने याद किया है, बहुत शुक्रिया। और जिन सिंगर्स का आपने जिक्र किया है कल याद करवाइएगा इंशाल्लाह, इन सिंगर को हम जरूर प्ले करेंगे, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, हमने आपसे पूछा वो क्या है जो एक इंसान को दो बना देता है, ये जानने के लिए आपकी कॉल शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अदा वेलकम कहते हैं आपको, क्या हाल है आपके, ठीक है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अदा वो जी अल्लाह का शुक्र, वो क्या है जो एक इंसान को दो बना देता है?
1: मुझे ख्याल में शीशो है।
0: आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, हम भी आपके ख्याल के हम ख्याल हैं अदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अदा अजीज सोलंगी थे हमारे साथ और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, शीशा या फिर आईना। और जनाब मजीद सवालों का सिलसिला स्टॉप कर देते हैं यहाँ हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है छोटे से तशरी वक्फे की जानिब भी जाना है। तो जनाब यहाँ पर आपके कुछ टेक्स्ट हैं वो शामिल प्रोग्राम कर लूँ, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। आयशा वालेकुम अस्सलाम, वेलकम इन अवर शो, थैंक यू चंदा, आप शाम में प्रोग्राम हुई। और आसमा आपका भी शुक्रिया, आप शाम में प्रोग्राम हुई।

सकलेन अब्बास कहते हैं कैसे हो, और बहुत शुक्रिया भाई सकलेन आपका। लाड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, अदा थैंक यू तवाजी मेहरबानी तवा सा के ज्वाइन कयो। आसिफ राजपूत मीरपुर खास से नाइस शो है आज का, ओके बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और जनाब जिसने भी ये टेक्स्ट किया है कि पर्सनल नंबर से बात करने का, तो माजरत ख्वाहूं। देखें आरजे का और लिसनर्स का जो ताल्लुक होता है ना वो माइक का होता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में एडिशन जो है वो नामुमकिन सी बात है, और मैं माजरत ख्वाहूं पर्सनली जो है ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। और ये जब हमारा माइक ऑन होता है उस वक्त हम आरजे होते हैं, जब माइक ऑफ होता है हम आम इंसान होते हैं, हमारी भी रूटीन लाइफ होती है। तो मेरे सिलसिले में यानी कि आरजे गुलनाज से फोन पे बातें ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम पसंद आता है, आवाज अच्छी लगती है, तो इसमें तमाम तर जो है वो रब की ही सारी की सारी कारीगरी है, मेरा कोई आर्ट नहीं है। तो जनाब मैं माजरत कहूँ, मैं पर्सनल नंबर से बातें नहीं कर सकती उसके लिए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जी मुसम्मत खिते जी अमुन इस्तेहकाम लाए कोशिशों जारी रखने जो ऐलान शहबाज शरीफ चयो है तो पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल तौर ते एके जो इजहार करे तो हमला सऊदी अरब की सलामती ए खुद मुख्तियारी खिलाफ आन हमलन से खिते जो अमुन इस्तेहकाम मुतासिर थी सके तो पाकिस्तान खिते जी अमुन सलामती ए इस्तेहकाम लाए पांजो कोशिशों जारी रखंदो।

अमरीका ऐं ईरान विच में अबनाह हुर्मुज़ तां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बोशहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया आहिनि। हमलनि दौरान ईरान जी दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बहरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बे अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाह हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। कराचीअ में रेंजर्स कैम्प ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जी मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस आफ़ीसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई घरू वज़ीर चयो त रेंजर्स कैम्प ते 4 दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़ग़ानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो हो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तारी कारी बशीर ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे।

0: देखिए रासे उल्फत से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जल, फन की ट्रेजेडी।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो उदंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फैम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: घरू वजीर जयालन जा चो तो रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफगानी और एक बाजोड़ जो रवासी हो। रेंजर्स के मास्टरमाइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो है। एसपी CTD चयो तो हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वही। दहशतगर्दन में जाना अब्दुल हादी, उमर फारूक और उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो। दहशतगर्दन के अफगानिस्तान का बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुंचाया वो है। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथा गिरफ्तार कारी बशीर डोह जो भी एतराफ किया है। बलोचिस्तान में फोर्सेस जो दहशतगर्दन खिलाफ गडल ऑपरेशन शहबान जारी। वधीक चार दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन दौरान मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वयो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब बलोचिस्तान में पाक फौज, FC ए पुलिस गडल ऑपरेशन जारी रखियो है। ऑपरेशन दौरान वधीक चार दहशतगर्दन के मारे वयो। ऑपरेशन शहबान में मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वयो। गडल ऑपरेशन दौरान मारजी वयल अंग वधी 121 थी। मुल्क के नुकसान पहुंचाने चाहन था। कराची दहशतगर्दन के निशाने ते है। रेंजर्स के हमले में मुलविस सब जवाबदार गिरफ्तार थी वया। कराची में मीडिया से गालाइंदे वडे वजीर चयो तो सिंध आलमी सीड़पकारी जो मरकज बणजी रो है। हुकूमत सीड़पकारन के बेहतर माहौल फराहम करण लाए पुरजम है। कणक जखीरो कदड़न खिलाफ कार्रवाई करे रहा आयु। हुकूमती कार्रवाई सबब अटे जगह में इस्तेहकाम आयो है।

अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त छा इंतज़ामी ऐं ॿिया आफ़ीसर पाण खे अदालत खां मथां समझनि था। हीअ नाज़ुक मामिलो आहे। ज़हरीलो पाणी इंसाननि तोड़े ॿी हयातियात लाइ मसइलो बणजी चुको आहे। आफ़ीसर पेश न थी रहिया आहिनि। कराचीअ में फुर मज़ाहमत ते क़तल थियल डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शोरे मां गिरफ़्तार। ज़रियनि मूजिब पुलिस सागर ऐं रामचंद खे गिरफ़्तार करे जांच शुरू करे छॾी। मक़तूल आकाश जे वारसनि चयो त आकाश जे आख़िरी रस्मनि बाद केस दाख़िल करायो वेंदो। डॉक्टर आकाश खे गुज़िरियल ॾींहुं फुर मज़ाहमत ते कराचीअ में क़तल कयो वियो हो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि सां 6 ॼणा क़तल। दरिया ख़ान मरी वेझो फुल रोड ते हथियारबंदनि जी फायरिंग। दुकान ते वेठल नौजवान क़तल थी वियो। गौसपुर में लोलाई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो संगाती तकरार सां हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी। रादन भरिसां बि प्लाट जे तकरार सां ॻोठाणो क़तल थी वियो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। खैरपुर नाथन शाह वेझो बि हथियारबंदनि हथां नौजवान क़तल। कारण मालूम न थियो। लाड़काने जे ॻोठ बगन कोराई में बि पुराणे तकरार तां पोरियत खे क़तल कयो वियो। जाम शोरो वेझो अलमंज़र पुल वटि बि हथियारबंदनि रक्षा ते फायरिंग कई। ड्राइवर क़तल थी वियो।

0: सिंध में ज़रई पाणी जी खोट बरकरार, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। हैदराबाद में बदीन ज़िले जे आबादगारनि जो पाणी खोट ऐं चोरी ख़िलाफ़ चीफ इंजीनियर कोठड़ी बैराज जे आफ़ीस आॾो एहतजाज। सुल्तानीबाद जे पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी जे अथरादू खोट, चोरी ऐं कामोरनि जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में बि क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुरादवा में पाणी खोट ख़िलाफ़ डीसी आफ़ीस आॾो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली वेझो बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। मुरादवा जे पुछड़ ते पाणी ॾियण जो मुतालबो। कड़ियो गांवर में बि आबादगारनि एहतजाज कयो। खैबर में बि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। लाड़काणे में बि अवामी वर्कर्स पार्टी पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सिंध में 79 दवाउनि ऐं सिरिंज जा नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरिंजनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾेई छॾिया। रिपोर्ट मूजिबि 2461 नमूननि मां 79 नमूना मुक़रर मयार ते पूरा नल था आहिनि। 30 आटो डिसेबल सिरिंजू गैर मयारी ऐं जाली आहिनि। आटो डिसेबल सिरिंजू रुगो हिकु भेरो इस्तेमाल लाइ हूंदियूं आहिनि, पर फराम कयल कुझु सिरिंजू मुकमल तौर आटो डिसेबल न हुजणु सबबि ॿीहर इस्तेमाल थियण जो ख़दशो आहे। 20 हर्बल शयुनि में एलोपैथिक जुज़नि जी मौजूदगी मिली आहे, जॾहिं त 9 दवाऊं पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वटि रजिस्टर न आहिनि थियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: स्क्रीनो
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो हक मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह दहशतगर्द मारजी वाया, मारजी वालों जो अंग वधी 85 थी वो सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस की कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन की गाड़ी के कामयाबी से निशानो बनाए वधीक बिन दहशतगर्दन के मारो वो। पाक फौज FC ए पुलिस जो गडल ऑपरेशन दौरान हवाई ए जमीनी कार्रवाई जरिए खारजिन के निशानो बनाए पे वे। ऑपरेशन शाबान ए बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर से 123 खारजी मार चुका। वजीर आजम पारा सऊदी अरब से हमलन की मजम्मत खिते की अमुन ए इस्तेहकाम लाए कोशिशों जारी रखने जो ऐलान। शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल तौर से एके जो इजहार करे तो हमला सऊदी अरब की सलामती ए खुदमुख्तियारी खिलाफ आन। हमलन से खिते जो अमुन इस्तेहकाम मुतासिर थी सके तो पाकिस्तान खिते की अमुन सलामती ए इस्तेहकाम लाए पैं कोशिशों जारी रखन्द। अमेरिका ए ईरान विच में आबनाए हुरमस से शुरू थियल छिकतान खत्म न थी। बिन्हीं मुल्कन जा एक बे की थाकन ते मिसाइल हमला जारी। अमरीकी फौज की लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहर से बम्बारी। सेंटकॉम मूजिब वो शहर चाबहार जासिक कनारक अबू मूसा ए बंदर अब्बास से हमला किया वया। हमलन दौरान ईरान की दिफाई निजाम ड्रोन ए मिसाइल थाकन ए बेरी सलाहित के निशानो बनाए वो। ईरानी फौज जा भी अमरीकी अड्डन से जवाबी हमला। बहरीन ए उर्दन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाए वो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका के अल जफीर वाले अड्डे के निशानो बनाए वो है। आबनाए हुरमस पार कंदड़ बिन बेड़न के भी नाकारा बनाए वो। कराची में रेंजर्स कैम्प से हमले में भारत मुलविस निकतो। हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण की तस्दीक। हमले की मास्टरमाइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दन दोह जो बेतराफ करे वरतो। पुलिस ऑफिसर से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वजीर जयाल अंजार चयो तो रेंजर्स कैम्प से 4 दहशतगर्दन हमलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफगानी ए एक बाजोड़ जो रवासी हो। रेंजर्स के मास्टरमाइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो है। SSP CTD चयो तो हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वही। दहशतगर्दन में जाना अब्दुल हादी उमर फारूक ए उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो। दहशतगर्दन के अफगानिस्तान का बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुंचाया वो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथा गिरफ्तार कारी बशीर डोह जो बेतराफ कयो आहे। दहशतगर्द मुल्क के नुकसान पहुंचाने चाहन था। कराची दहशतगर्दन के निशाने ते आहे। रेंजर्स ते हमले में मुलविस सब जवाबदार गिरफ्तार थी विया आहन। कराची में मीडिया से गालंदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो तो सिंध आलमी सीड़पकारी जो मर्कज बणजी रो आहे। हुकूमत सीड़पकारन के बेहतर माहौल फराहम करण लाए पुरजम आहे। कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई कर रहा आयो। हुकूमती कार्रवाई सबब अटे के अग में इस्तेहकाम आयो आहे। आजाद कश्मीर में पाबंदी मिलल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हथियारबंदन जो रावला कोर्ट में फोर्सिस ए शहरन ते हमलो। एक रेंजर अहलकार शहीद एक जख्मी। पाबंदी मिलल एक्शन कमेटी के हथियारबंदन मतियाल मेरा में बस अडे रावला कोर्ट वेझो शहरी आबादी ते हमलो कयो। फोर्सिस हमलो रोकण की कोशिश कई तो हथियारबंदन जदीद हथियारन से फायरिंग कई। माहिरन मूजिब पाबंदी मिलल तंजीम के हथियारबंद जत्थन खिलाफ एक्शन अंटर थी वो है।

0: ना नहीं बैटरी का।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी FM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: पागल। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो, बदलता रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी FM 88 नेटवर्क ते।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: ये yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोच।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर उनके सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: अच्छा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: که من گرینو.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: find your reason. Find your
1: हक सच जो आवाज गीत एंड सिक्स सिंध जो आवाज बदलता रहो
2: या ट्रैफिक का जाम हर पल फन की ट्रैफिक

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक वधिक यूटर्न आमना हुर्मस ते 20% टैक्स लगाने वालों फैसलो वापस वी छो। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क्यादत की पॉलिसी ईरान के मुकम्मल तबाही के रस्ते से वी वही रही है। ईरानी बंदरगाह ईरानी कार्गो की मुकम्मल नाकाबंदी लागू कंदासी। आबना हुर्मस ईरान का सवाल सभी लाइ खुल है। आबना हुर्मस में तेल की अग का मकदार में सप्लाई अमेरिका की फौजी ताकत से मुमकिन थी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा सऊदी अरब से हमलों की मजम्मत खिते की अमुन और इस्तेकाम लाइ कोशिशों जारी रखने जो ऐलान मुकम्मल तौर से इक्के जो इजहार करे तो। हमला सऊदी अरब की सलामती ए खुदमुख्तियारी खिलाफ आन हमलों से खिते जो अमुन इस्तेकाम वधिक मुतासिर थी सके तो।

बलोचिस्तान में कारजन खिलाफ़ ऑपरेशन शाहबान जारी अॼु वधीक ॿ दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी वियलनि जो अंग वधी 85 थी वियो सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज़ जे कार्रवाई दौरान दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे कामयाबी सां निशानो बणाए वधीक ॿिनि दहशतगर्दनि खे मारियो वियो पाक फ़ौज एफ़सी ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन दौरान हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवायूं ज़रिए खारजन खे निशानो बणायो पियो वञे ऑपरेशन शोभान ऐं ॿियनि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर ते 123 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया।